के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ, चैनपुर बजार त्रिचोक, प्रोभाइडर पदम रसाइली, ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153877।

0: स्थानीय तहहरूमा हुला कार्यालयबाट सेवा चलेको छ नि।
1: थ्याङ्क यू मेरो दाइ, आज राम्रो कुरा थाहा भयो।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन हो।
3: प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
4: देख देख देख, अरे और ये बाप रे बाप, स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो, दू चार भी लिखवा ले का। अरे रे, ए, ए।
3: आ, जिगर पलट।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 8 बजे

0: 말해 뭐지 뭐지 뭐지, 뭐지? 오, 내 가을기 아니? 자.
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू चारी भी क्या लिखवा ले तू का अरे
1: ए ए आ जिगर पलट

कंग्रेस विवाद अब पूर्ण इजलासमा 26 गते आउँदै देउवा निगमसँग ग्यास भण्डारण नहुँदा